जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके तुमने ऐसी बात कही, दिल मेरा खो गया।

0: तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे नजर मिलाने की? हम तो पूरे देश की भाभी हैं।
1: बिजली सही है कि नहीं?
2: गीली पूछी दे दी। अंधेरों में सूरज को देख के
3: खफा है ये अजीब दास्तान। आप किसको दिखा रहे हैं? आप किसको दिखा रहे हैं?
4: फिल्म के कास्ट होंगे तेरेगा फातिमा सना शेख, जयदीप अहलावत, नुसरत बरूचा, अभिषेक बेनाजी, कोंकणा सिंह शर्मा, अदिति राव हैदरी, शिफाली शाहदे, मानव कोलफद हुनरवेरी तरंगिमिने। फिल्म का दक्वेदनी इंसानी गुणतवगे तेरेगा कुरिमतिवा उंदगु हालत तके। देहास बाविस वना हर नेटफ्लिक्स मेदवेरी को रिलीज कुरे मी फिल्म क्रिटिक होंगे फरातुम बोडो तारुही बेलिबुनु अदि नेरुनु फुरतम हफ्ता बंदुगा दिहा मिलियन वुरे गिना गडीरु बला एदोसुरेम कामयाब इंडिया गे ओरिजिनल फिल्म गे रिकॉर्ड मि फिल्म होदि देहा सेकाविस वनाहरु गे फिल्म फिया ओटीटी अवार्ड्स का मि फिल्म एगार नॉमिनेशन लिबुनेरु एगे तेरेम फस अवार्ड कामयाब वेस्कुरी मेगे तेरेग एमे मोळु बतला गे अवार्ड कोंकणा सेन शर्मा होता फवे।
5: भारती जी, आप घर पैदल जाती हैं?
6: हाँ,
5: हमारा घर भी पास में ही है, रिक्शा से 10 मिनट मुश्किल से और पैदल 15। पर शर्मा जी की बहू को कहाँ पैदल आने जाने को मिलेगा। आइए ना, हम आपको छोड़ दें।
6: आज कुछ खास है क्या?
5: आज हमारा दही बड़े खाने का मन है। आइए भैया। थैंक यू।
7: ये आपकी। अच्छा, आप हमसे कह रही थी ना, आपके फ्रेंड्स कौन कौन हैं?
6: फ्रेंड्स? दशरथ।
7: अरे वो नहीं, जैसे बेस्ट फ्रेंड।
4: विफिम के मैगनु थीमा की हसदवेरिकमा केत्तेरिकं कुडवुमा लोएब्बा तफात कुरुंतवगे सबुं आदागे इंसानुगे दिरिउलुं बदल वेगिंदा गोई कोमे बाइकी वेस वाकी वाहके कम गवियस हुरिहा वाहके वेस गुलिफवानी इंसानों के अमल तक उन्नु कुन्ना ही नुकुराफदा नतीजा तका।

0: Guess the dialogue.
1: क्यों अपना गुस्सा उस पे निकाल रहे हो? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा?
2: तुम्हें कोई हक नहीं मुझसे अर्जुन के बारे में बात करने का रिया। आई नो हाउ टू हैंडल हिम। मैंने बड़ा किया है उसे, सिर्फ मैंने। तुम्हें तो कभी फुर्सत ही नहीं मिली अपने काम से। वक्त था तुम्हारे पास कभी? वक्त था?
1: हाँ देव, मेरे पास वक्त नहीं था, बिकॉज आई वर्क वेरी हार्ड। मर्दों से तो कोई नहीं पूछता जब वो बिजी होते हैं। जब उनके पास बच्चों के लिए वक्त नहीं होता तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? टेल मी देव, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि सच तो ये है, इस घर में मर्द मैं हूं। मैं
3: मी कौन फिल्म में कही मैंने डायलॉग है? मिसुआ का जवाब फणवाणी पीएसए में आमे दोर को बालाना साड़ी शोया जवाब फणोम की सुंगड़िया की अंगार दोह के मेंदम पार गड़ सुमने कॉम में हफ्ता को स्कूरी एक गिंदा बालाना साड़ी मिशो का गेनेस्ते केस्ता डायलॉग के एम में गिनस वालतो के जवाब रंगल कुरा बैवरे का महा को इफार नगा गुरो तुम खास हादिया एली बेने एम में गिनस वालो के जवाब रंगल कुरा बैवरे नगाणी कॉम में महे गिवस एम में फहुशोगा
0: गेस्ट द डायलॉग
4: मशहूर तेलुगु फिल्म विक्रमा कुरुडु अदि एगे हिंदी रीमेक राउडी रातोरकी इंडिया के व्यापार सिनेमा के तारीख गवरा मुहिम मुदे फिल्म मिदे फिल्म के वस मसाला जोन रागे उफेदुन तके ओरिजिनल तेलुगु फिल्म के साबों देखुन इंडिया के एक्शन फिल्म तक मुली इंडिया का बोडो मकबूल का मिलिबुनेरु एगे हिंदी रीमेक के साबों देहाहु गे आहरतो गे एक्शन फिल्म तो गे फोरी बॉलीवुड का अलुं आला वेकें दिया मि हफ्तागे एरा मिहार बैग मि बलालानी मिदे फिल्म
5: एरा मिहार

0: विक्रम
1: चलो भाई अपना अपना पैसा उठाओ और आना नहीं है वापस। चलो
0: ये क्या हो रहा है?
2: गीता विक्रम राठौरी जाने
1: क्यों बाप जी, देख के डर गया या डर के देख रहा है?
0: भूल गया का पिछली बार हमारे भाई टिट्टा ने आईसन पिटाई की थी, डर कर भाग गया था तू।
1: शेर जब दो कदम पीछे लेता है तो झपटने के लिए ना ही डर के, समझे ना।
3: जिस तरह तेरे बेटे को लटका कर मारा था ना,
1: ठीक उसी तरह तुझे और तेरे भाई टिटला को मार कर इस गांव की कुंडली सेट करनी है।
0: हाँ, हमार कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस गांव में सिर्फ एक ही रावड़ी है।
1: मैं भी तो यही कह रहा हूँ, इस गांव में सिर्फ एक ही रावड़ी होना चाहिए। मैं रावड़ी राठौड़।
4: विक्रमा कुरुडूग रवि तेजाग एक्टिन फेन्नणी वरं असरुगद अदि हगीगी कंतत्तके एनगे एक्शन मंजरतककी वर बुर अदि हिब्बरु दक्कु अदे मंजरतके अक्षय कुमार ग फरातोन रौडी रातोर्ग फेन्नणी स्टाइलिश अदि वेलुंतिरिं गयावाफद एक्टिन्ने खासको डॉट एंग्री मीफद डायलॉग तकुं अक्षय ग करेक्टर इतुर मक्बूवे
0: चिंता चिंता का है रे?
1: चिंता का मतलब है लाठी, ताता का मतलब है पिछवाड़ा और चिता चिता का मतलब है चटनी। यानी कि लाठी से मार मार कर तेरे पिछवाड़े की चटनी बनाऊंगा, समझे?
3: डोंट एंग्री मी, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और हाँ जो मैं नहीं बोलता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ।
4: विक्रमा कुरुडू बिनायफणी देखुनु इंडिया के रफुश के माहौला नमविस राउडी राठौड़ के वाहक बदल को फमणी उतुरु इंडिया के बिहार के आवश्यक मी बॉलीवुड के बेलुन तिरना गै माहौल का फिल्म बदल कुरुमा के नया बदले
5: चिकनी

0: ए खियाल तक सहुराया केलते बुनी मा पोडा
1: मिहात
0: मस्ते लाफा सामसलु मस्कोले नगाफा सहुराया को वाले बुनु मिहा देने एकमकु अशाना बलहट्टा केन हुरी ओळवालन सहुराया कुरेवेने एवस कमेने वे हुरी हा कमका बुनेमुनु एच्चे बुनेमुनी अशाना बलहट्टा केन हुट्टा
1: दरफुल कोंगे रक आई
2: मम्मा हैप्पी एन्नोंदो
0: अशाना एही जहुरा ए पहनुवी
1: की वे हैप्पी नुआंवे मी मम्मा बेनु बिगोय
0: जहुरा देखकी वाहका अशाना कबूल एन्नुकुरे वो मायकु कुरंगे कंतो के वाहका देखकुम के पतल का देमवेस अशाना देखकी एहिं वाहके
2: मम्मा नुजे नति हें उलेका डैडी आलु मेरी कुरम वेनु
0: अशाना मडु मडु बुनी
1: दरफला डैडी आय को नोले बिगेनेनो मम्मा डिवोर्स वे ए नोनस मिहा हैप्पी को उले उलेफा देंगे वह कुटाला खामा कुत दरफुलती आई
0: वारा लोई पाए को जहुरा पुनी
2: बादी ओए बकिया मेरी कुरम वे नुं है ए वे मम्मा के के तो बुननी बालालम वे के मि आई
1: अब कुरम वे नु डैडी की के बुने
2: डैडी पुनी डैडी के मसले ने तो मम्मा के मसले ने तिया मम्मा कह रही गा हाल बाला शो ए वाहक दक्कालं डैडी गुलियस मसले नहीं है
0: मिहा तकी एक हाला ओका तेरी मी है

0: अपने जाऊं।
1: ठहरो मीना, मैं खाना लेके आता हूँ, दोनों इकट्ठे खाएंगे। हाँ
0: ओके।
2: चिराग सीट, मेरी माँ सख्त बीमार है, डॉक्टर के पास ले जाना है। गाड़ी ले जा सकता हूँ?
3: हाँ ले जाओ ले जाओ।
2: थैंक यू सर।

0: यार नाटक ना कर, नचना यार नचना।
1: अरे अरे छोड़ो यार, मैं नहीं नाचूंगा वाचूंगा।
2: ओए पुत्र नचना, भैन की सगाई चे तो भाई नू नचना ही पैंदा है।
1: हाँ हाँ तो फिर बड़े भैया को नचाओ ना।
3: क्यों, तेरी भी तो भैन है।
4: ऐ गल चंगी बोली।
5: ओ कम ऑन शेखर, नाचो ना।
1: नहीं नहीं मुझे नहीं नाचना।